0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सच्चे

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0303-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल।

0: इससे देश की आबादी और श्रम बल में तेजी से इजाफा हुआ है।
1: अपनी वेबसाइट है पर तुसी टैक्स फोटोज या वीडियोस चेंजेस खुद नहीं कर पांदे ता तुहानू लोड है आई वेब गाय वाले नु 403-400-0203-403-400-0203 ते कॉल करन दी www.iwebguy.ca।
2: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
3: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
2: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
3: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
2: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
3: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
2: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
3: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।

मेरे मन में एक सवाल आया, वो ये कि जानवरों के रंग रूप कद काठी और बनावट में थोड़ा सा भी अंतर होता है तो उन्हें अलग प्रजाति का मान लिया जाता है, जबकि सारी धरती पर रहने वाले सारे इंसान एक ही प्रजाति के माने जाते हैं, यानी होमो सेपियंस के। मैंने एआई के सामने ये सवाल रखा तो उसने मुझे बड़े कायदे से समझाया। उसने बताया कि प्रजाति कद काठी और रंग रूप से तय नहीं होती, बल्कि अगर दो समूहों के जीव आपस में सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकें और उनसे जो बच्चे पैदा हों वो भी आगे अपने बच्चे पैदा कर पाएं तो उन्हें एक ही प्रजाति का माना जाता है। दुनिया के सभी इंसान, चाहे वो अफ्रीका से हों, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया से, उनके प्रजनन से जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो प्रजनन करने में पूरी तरह सक्षम हैं, इसीलिए वो सभी एक प्रजाति के हुए। एआई ने एक और उदाहरण दिया, जैसे एक गधा और एक घोड़ी प्रजनन करें तो उनसे खच्चर पैदा होता है, लेकिन खच्चर अपनी संतानें पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए गधे और घोड़े अलग अलग प्रजाति के जीव हुए। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं और गधे में 62, और उनसे पैदा खच्चर में 63 गुणसूत्र होते हैं। 63 एक विषम संख्या है, इसलिए प्रजनन के लिए जरूरी गुणसूत्रों का सही जोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण अधिकांश खच्चर बांझ होते हैं। क्या आपको पहले से ये पता था? कमेंट करके बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आज हमारे पास आपके लिए क्या क्या है। आर्कटिक इलाके में तेजी से पिघलती बर्फ, पोलर बियर संकट में।

0: कचरा। और जापान के एक चिड़ियाघर में बेबी अल्बिनो मंकी बना नया स्टार। इस धरती का सबसे सुंदर हिस्सा कौन सा है, मुझसे पूछिए तो मैं कहूंगा इसके ध्रुव, जहां दूर दूर तक बर्फी बर्फ नजर आती है फिर भी वहां जीवन सांस लेता है। कुछ जीवों ने खुद को वहां के हालात के मुताबिक ढाल लिया है और वो उसमें रच बस गए हैं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन सब कुछ बदल रहा है, उनकी दुनिया में भूचाल ला रहा है। खाने के बाद अच्छी नींद का अपना ही मजा है, लेकिन ध्रुवीय भालुओं का खाना और उनका अस्तित्व अब संकट में पड़ रहा है। आर्कटिक सागर में जमी जिस बर्फ पर चलकर वो सीलों का शिकार करते हैं वो पिघल रही है। धरती के बढ़ते तापमान का जितना नाटकीय असर ध्रुवीय इलाकों में हो रहा है उतना कहीं और नहीं दिखता। ऐसे में खाने की तलाश इन भालुओं को इंसानी इलाकों की तरफ आने के लिए मजबूर कर रही है, खासकर गर्मी के दिनों में। कनाडा के सुदूर इलाके यूरेका में इंसानों पर ध्रुवीय भालुओं के हमले बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं और पोलर बियर इंटरनेशनल नाम की संस्था इसे ऐसे ही बनाए रखना चाहती है।
1: ये इलाका बहुत कम आबादी वाला है और हमारे पास यहाँ की आबादी के बहुत भरोसेमंद आंकड़े नहीं हैं। इसकी वजह ये है कि ये क्षेत्र बहुत उत्तर में है जहाँ शोध और निगरानी करना बेहद महंगा पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि ध्रुवीय भालू यहाँ बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, संसाधन कम हैं और एक दूसरे से काफी दूर दूर मौजूद हैं। मौसम केंद्र पर अब तक भालुओं के साथ जो आमना सामना हुआ है वो भी इसी बात की पुष्टि करता है।
0: पिछले साल पोलर बियर इंटरनेशनल ने एआई की मदद से चलने वाले कैमरा रडार लगाए। इनका मकसद है यहाँ सुदूर इलाके में स्थित मौसम स्टेशन के कर्मचारियों और ध्रुवीय भालुओं का टकराव ना हो। रडार से ली गई एक फुटेज में स्टेशन के पास एक

0: लालू और उसके दो बच्चे सील का शिकार करते देखे गए।
1: ये सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि अगर उसे कोई ऐसी चीज दिखे जो भालू की तरह चल रही हो, भालू जितनी बड़ी हो या जिसकी पहचान ना हो सके, तो वो एक छोटी सी चेतावनी ध्वनि बजा देता है। एक बार स्टेशन के एक कर्मचारी ने वो अलार्म सुना, फिर कैमरे की तरफ देखा तो उसमें एक ध्रुवीय भालू दिखाई दिया। सौभाग्य से वो काफी दूरी पर था, इसलिए उनके पास ये देखने और समझने के लिए पर्याप्त समय था कि वो क्या करने वाला है।
0: कनाडा और अमेरिका के अलास्का से लेकर रूस, नॉर्वे और ग्रीनलैंड तक फैले विशाल आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका उनका आवास क्षेत्र माना जाता है। हालांकि उनकी संख्या सिर्फ 22,000 से लेकर 31,000 के बीच होने का अनुमान है। ध्रुवीय भालू कठोर मौसम के आदी होते हैं। बात एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की हो, शिकार, प्रजनन या फिर आराम करने की, ये जानवर समुद्र की बर्फ पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन इसी रफ्तार से होता रहा तो इस सदी के आखिर में ऐसी स्थिति आ सकती है कि गर्मियों के दौरान आर्कटिक में बर्फ शायद बचे ही ना। ऐसे में कुछ इलाकों से ध्रुवीय भालू खत्म हो सकते हैं, यानी वो ऐसे संकट के दुष्परिणाम झेलने को अभिशप्त हैं जिसे पैदा करने में उनका कोई हाथ नहीं है। गर्मी में अक्सर हमारे शरीर से पसीना निकलता है, इससे हमारे शरीर को थोड़ी ठंडक मिलती है। दरअसल हमारा शरीर पसीना निकलने से ठंडा नहीं होता, बल्कि जब पसीना हमारी त्वचा से वाष्प बनकर उड़ता है तो वो अपने साथ कुछ गर्मी को भी ले जाता है और इससे हमें थोड़ी राहत महसूस होती है। मजे की बात यह है कि पसीना पेड़ों को भी आता है, ठीक जैसा हमारे शरीर के साथ होता है वैसा ही पेड़ों के साथ होता है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और जब पेड़ ट्रांसपायर करना बंद कर दें तो वो मरने लगते हैं।
2: बस हम आ पहुँचे, यही है वो पेड़ नंबर 37 जो ओक का पेड़ है। हम कई साल से इसकी निगरानी कर रहे हैं और अब ये पूरी तरह सूख चुका है, तो ये इस स्थिति में आ गया है।
0: ओक नंबर 37 अब अपना पसीना नहीं निकालता। लगातार लू चलने और बार बार सूखे के मौसम की वजह से फ्रांस के जंगलों में पेड़ बेहद दबाव झेल रहे हैं। आमतौर पर पेड़ अपनी पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों से पानी को वाष्प के रूप में बाहर छोड़ते हैं, इससे पेड़ का तापमान संतुलित होता है। साथ ही पानी और दूसरे पोषक तत्व जड़ों से ऊपर की ओर जाते हैं, इससे आसपास हवा में नमी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी और सूखे के हालात होते हैं तो पेड़ पानी बचाने लगते हैं। उनकी पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं ताकि पानी बाहर न जाए। इससे पेड़ पानी की कमी से तो बच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर तापमान बढ़ जाता है, इससे पत्तियां मुरझा सकती हैं और लंबे समय तक ऐसा हो तो पेड़ सूख जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ों की अच्छी सेहत के लिए ट्रांसपीरेशन बहुत जरूरी है।
2: असल में पेड़ पानी का एक लंबा स्तंभ होता है। ये बड़ा सा पानी का स्तंभ पत्तियों में होने वाले ट्रांसपीरेशन की खिंचाव शक्ति से ऊपर की ओर खड़ा रहता है। दिन में धूप पड़ती है, पेड़ ट्रांसपीरेट करता है और ये खिंचाव पानी को ऊपर खींचता रहता है। इससे पेड़ थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, ये आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन मापने पर पता चलता है। रात में जब वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, पेड़ फिर से जमीन से पानी भर लेता है, उसकी नलिकाएं पानी से भर जाती हैं और पेड़ हल्का सा फूल जाता है।
0: फ्रांस में जंगलों की निगरानी करने वाली संस्था नेशनल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से साल दर साल हालात मुश्किल हो रहे हैं।
2: और व्यापक रूप से देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर हर साल वनों में कुल मिलाकर पेड़ों के स्वास्थ्य में कमजोरी और गिरावट देखी जा रही है, और हाल के सालों में ये बात ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है।
0: दुनिया भर की तरह यूरोप भी बढ़ते तापमान को झेल रहा है। इस महाद्वीप में फ्रांस को सबसे विविध जंगलों का घर माना जाता है, लेकिन नेशनल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि तेज होती गर्मी की तपिश और बार बार सूखे के हालात ने पेड़ों को कमजोर किया है और बीते साल में उनके मरने की दर दोगुनी हो गई है। हालत

0: यह है कि 2050 तक पेड़ों की 30% प्रजातियों के खत्म होने का अंदेशा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल चंद दशकों में इतनी गर्मी का सामना करने को मजबूर हैं, जितनी उन्होंने पिछले 10,000 वर्षों में झेली है। अफ्रीकी हाथी जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। एक वयस्क अफ्रीकी हाथी का वजन 5 टन या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। इस हिसाब से सोचें तो 1 करोड़ अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर प्लास्टिक का कचरा हर साल हमारे महासागरों में जा रहा है। ये बात हाल में महासागरों पर आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कही गई है। जैसे जैसे धरती के ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 2015 से पहले जहां इसमें हर साल 2 मिलीमीटर से भी कम का इजाफा हो रहा था, वहीं 2023 में इसमें 4.3 मिलीमीटर की वृद्धि देखी गई है। ये बात वर्ल्ड ओशन डे पर जारी संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में कही गई है। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ओवर फिशिंग यानी अंधाधुंध मछलियां पकड़ने जैसी इंसानी गतिविधियों की वजह से महासागरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और उनके इकोसिस्टम को बचाने की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट कहती है कि 1955 से समुद्र में जितनी गर्मी बढ़ी है उसमें से 16% वृद्धि 2018 के बाद हुई है। तुलनात्मक रूप से इसका सबसे ज्यादा असर अटलांटिक महासागर और भारतीय और प्रशांत महासागरों के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 5.25 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समंदर में पहुंच रहा है। अनुमान है कि इससे 24 ट्रिलियन से भी अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण पैदा होते हैं, जो अब 4,000 से भी अधिक समुद्री प्रजातियों को प्रभावित कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि समुद्र को लेकर हमारी जानकारी अब भी बहुत सीमित है। 2025 तक सिर्फ 27.3% समुद्री तल की ही मैपिंग हो पाई है। इसका मतलब है कि गहरे समुद्र के इकोसिस्टम, जैविक प्रक्रियाएं और उनके संयुक्त प्रभाव को हम अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यानी महासागरों की गहराई में हो रहे नुकसान का भी हम सही से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अब चलते हैं जापान, जहां पिछले दिनों शिजुका चिड़ियाघर में एक अल्बिनो मंकी का जन्म हुआ, जिसे देखने के लिए वहां बहुत सारे लोग उमड़ रहे हैं। अपने अनोखे रंग की वजह से ये बंदर जापान के शिजुका शहर के चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछले महीने जन्मे इस बच्चे के माता पिता बंदरों की अबिसिनियन कोलंबस प्रजाति से हैं, जो मूल रूप से इथोपिया जैसे अफ्रीकी देशों में मिलती है। ये बंदर अपने चमकदार काले और सफेद फर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये बच्चा पूरी तरह सफेद है। चिड़ियाघर के स्टाफ का कहना है कि इन बंदरों के बच्चों का पूरी तरह सफेद होना आम बात है, लेकिन 3 महीने का होते होते उनके शरीर पर वयस्कों जैसे काले और सफेद पैटर्न उभरने लगते हैं। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि ये बच्चा नर है या मादा। चिड़ियाघर ने कहा है कि वो स्वस्थ है और उसका विकास सही तरीके से हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा आपकी प्रतिक्रिया।
1: बिल्कुल जी, बड़ा वधिया मैसेज सीगा। तुहानू पता भी ये जेड़ा समा हुंदा है ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन करन दा ते हैगा ही है, बट चंगा लगदा क्लाइमेट दे उत्ते जिन्नी वध तों वध गलबात कीती जावे ते की कुछ इंपैक्ट ने, वो सारे तुसी जानन दी कोशिश कीती इस रिपोर्ट दे थ्रू। ते आने वाले टाइम दे विच होर भी गल्लांबात जिहड़ियां ने वो तुहाडे नाल इसे तरीके नाल जारी रखांगे। आई होप भी तुसी काफ़ी कुछ अज दे इंटरव्यू ते उस तों बाद जिहड़े ये प्रोग्राम इहदे बारे जाण के मिलिया होएगा। बट उहदे नाल नाल तुहानू पता भी हनीफ साहब ने जिहड़ी है वो चंगी तह लाई सीगी अमरीका दी, ते नाल उहदे रिलेटड जिहड़ियां बाकी दीआं गल्लां बातां भी उन्होंने सुनाईआं कि भी किस तरीके दे नाल इह सब कुछ हुंदा जा रिहा। बैक होम दे विच जदों आपां गल्लबात करदे हां ते उत्थों दे इशूज जिहड़े ने उह काफ़ी ज़्यादा आउंदे ने। एक होर भी इशू हैगा जिहदे ते गल्लबात करांगे, क्योंकि ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबराम 94.7
4: एफएम। टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: The time is 3 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: 94.7 FM Radio Sursangam. Har hafte weekend te suno. Monday to Friday. Sham 4 to 5. Kuldeep Singh Vichar Charcha. Sham 8 to 9. Jitendra Pannu. RadioSursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
2: Hey, here's some drug impaired driving laws. Simplified. If police suspect you're driving impaired by drugs, they have the tools to arrest you. First, a roadside test. And if you fail, further testing at the station, which can lead to your arrest and a criminal conviction for impaired driving. It's not just alcohol, it's drugs too. If you drive high, there will be consequences.
3: Let's keep our roads safe. A message from Met Canada.
4: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: मशहूर कस्बे सोपोर में हूँ। इसे छोटा लंदन भी कहा जाता है। कस्बे सोपोर जिन दूसरी चीजों के लिए मशहूर है, उनमें यहाँ का टोंगा भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने टोंगा का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया है। मेरा नाम मुनीर है और मैं एक हिस्ट्री बफ हूँ। और ऐसे टॉपिक्स पे बात करना हमेशा मेरी क्यूरियोसिटी रही है। चले आज जानते हैं ये दिलचस्प कहानी इन्हीं लोगों की जुबानी। यहाँ इन गलियों की सैर ये साहब हमें कराएंगे। ये बहुत अरसे से टोंगा चला रहे हैं।
6: मेरा नाम है फारूक अहमद शेख। वो अपने मामू ने सिखाया, फादर ने सिखाया, सब खानदान भी यही चलाते हैं।
5: इस घोड़े का कोई नाम रखा है आपने?
6: मोहम्मद नाम है शेरू।
5: शेरू, तो शेरू की आप बहुत ज्यादा देखभाल कर रहे हैं।
6: कर रहे हैं। अमिस क्या थोमत शेरू ना क्या ये दिन बेकिस गुरिस ब्रोकन पानस को नहीं इसी शेर से पड़े कैसा और दाब करने खड़ा है।
5: तो किस तरह का ख्याल रखते हैं आप अपने शेरों का?
6: बराबर पन्नीस बच्चे फक्स में मैं ख्याल रखा काल चंद्र सुबह शाम ये भी सुबह पान निंद्रे बहुत अत बुत चल पत नमाज से इधर दम टाइम पत आज बने मिस गानस मस गोड़ कर नेबर करना वन चकर पत आनस बाज एक तुसरान करे तान चोर चले टाइम पत लागस पाल।
5: अच्छा, किस तरह के लोग ज्यादा टांगे का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो टूरिस्ट है, लोकल्स है?
6: सोपोर ज्यादातर इस फ्रूट मंडी अच्छी ज्यादा पान चलान टांगन रेडन पे अंद पे एरिया तेज़ खास जमींदारी वमींदारी अत ग गाड़ आटो वाटो ओर अम मूजूब पसंद ये।
5: तो तेल के क्राइसिस में आज तेल ना होने के बराबर अब वो हालात बन रहे हैं हमारे, तो आपको क्या लगता है टांगा किस तरह का मदद दे सकता है?
6: वह मदद हेकान यथ पे चल कि अगर गाड़ वोल नी सुबह तेल राशन गाड़ वोल नी शहर मत रोप सास गो सतन हतन पे बेहो इनशा वापस ये। यह चीज कहान आमा टांग चलान पे कार पुन दमो ना अंक सम ट्रांसपोर्ट टांग त्रो न गवर्नमेंट कर सोपोर मं बंद गामों मज हे बंद ग
7: टांगे में तो मतलब वो ज्यादा वो किराया भी नहीं लेते हैं, तो ज्यादा हम मतलब पुरानी चीजों को ना मतलब अहमियत देनी चाहिए हमें। अगर आप देखिए रियलिटी में अगर देखिए अब आउटेज हो रहा है, अब धीरे धीरे ओके कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें सवारी करने का अलग ही मजा है।
5: तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं, नई गाड़ियां आ गई हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोज आ गए हैं, तो आपके इस काम पे फर्क तो नहीं पड़ा?
6: फर्क पेवान अम सत मगर अल्लाह तला चला प्रार्थना कि दिन रोपये सा बह श अत पे आज जन सत हत शमस अम सत आई फर्क अच्छे।
5: यहाँ आकर हमने टोंगा चलाने वालों की अक्सरियत में बुजुर्गों को देखा, लेकिन चंद एक नौजवान

0: नौजवान भी टोंगा चलाने में दिलचस्पी ले रहे हैं जो टोंगा कल्चर के लिए एक खुशाइन बात है।
1: मिशनर जाएंगे अहमद भट बिसरोदा सोबर मैसा गई त्रवेरी टांग चलावा मैसा स्मोल चलावा तवे को मिशो बुचला टांग यु बाइक लड़के जे तमो करत क्लाइम हादक बेकुन हादक वादे की तू चलावा वैसे घर घर पका पानन पान पका रोज कस पहुंचेवा पेट्रोल वसा को द्रो सिटन जशन गुरेस के ट्रेन टाइम में से मिस क्यों देन गैस गोर और फीड

की स्थिति साफ नहीं है। इसकी हालत ऐसी है कि कई पाकिस्तानी कानून विशेषज्ञ इसे जानबूझकर रखी गई अस्पष्टता कहते हैं, क्योंकि ये अस्पष्टता पाकिस्तान की कश्मीर नीति के काम आती है। कश्मीर की अपनी विधानसभा है, अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, अपनी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। कागज पर ये स्वायत्त जैसा दिखता है, लेकिन असली ताकत इस्लामाबाद के पास है। 1949 के कराची समझौते और 1970 के अंतरिम संविधान ने ये तय कर दिया कि अहम फैसले पाकिस्तान के हाथ में रहेंगे। रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, विदेशी मदद, व्यापार, ये सब पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में है। इसलिए आजाद कश्मीर को न तो पूरी तरह आजाद रखा गया, न पूरी तरह पाकिस्तान में शामिल किया गया, उसे बीच में छोड़ दिया गया। और इस बीच की कीमत वहां के करीब 40 लाख लोग चुकाते हैं। उनकी पाकिस्तान की संसद में कोई सीधी आवाज नहीं है, वे पाकिस्तान के आम चुनाव में वोट नहीं दे सकते, लेकिन उनके जीवन के बड़े फैसले इस्लामाबाद में होते हैं। पाकिस्तानी कश्मीर की राजनीति में एक अजीब सी चीज है, विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए रखी गई हैं जो बंटवारे के वक्त भारत की तरफ वाले जम्मू कश्मीर से गए थे। ये सीटें 1940 के दशक से किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। 1970 के संविधान में इन्हें औपचारिक जगह मिली और आज तक ये जारी है। शुरुआत में इसकी वजह समझ आती थी। उस समय पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जल्दी ही कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। जो लोग भारतीय कश्मीर से आए थे उन्हें अस्थाई माना गया। सोचा गया कि जब जनमत संग्रह होगा तो उनका भी हिस्सा होगा, इसलिए उन्हें आजाद कश्मीर की विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। ये एक अस्थाई व्यवस्था थी, लेकिन जनमत संग्रह कभी हुआ ही नहीं और अस्थाई व्यवस्था स्थाई बन गई। आज 75 साल से ज्यादा समय बाद भी उन परिवारों की अगली पीढ़ियां इन 12 सीटों पर वोट देती हैं। कई लोग पाकिस्तान में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, पाकिस्तानी पहचान पत्र रखते हैं, भारतीय कश्मीर से उनका कोई व्यावहारिक रिश्ता नहीं है, फिर भी वे आजाद कश्मीर की विधानसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं। वे वहां वोट नहीं देते जहां वो रहते थे, वे वहां वोट देते हैं जहां उनके पुरखे कभी रहते थे। यानी घड़ी 1947 पर अटकी हुई है। आलोचकों का कहना है कि ये 12 लोग पाकिस्तान की सरकार के एजेंडे को कश्मीर सरकार में लागू कराने के काम आते हैं। वहां सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं, ये तय करने में 12 सदस्य अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी की सरकार पाकिस्तान में होती है उसी की या फिर उसके किसी सहयोगी दल की सरकार पाकिस्तानी कश्मीर में होती है। इस महीने की शुरुआत से कश्मीर में इन 12 सीटों को लेकर भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे JAAC कहा जाता है, इन सीटों को खत्म करने की मांग करती है। उनकी बात बहुत सीधी है, जो लोग किसी क्षेत्र की विधानसभा चुनते हैं उन्हें उस क्षेत्र में रहना चाहिए, ये लोकतंत्र का बुनियादी नियम है। लेकिन जून 2026 की शुरुआत में कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीटें संविधान से सुरक्षित हैं, इन्हें हटाने के लिए संविधान में बदलाव जरूरी है। कानूनी रूप से यह फैसला समझ में आता है, लेकिन कश्मीरियों के हिसाब से सोचिए, इसका मतलब साफ है कि वे अपनी विधानसभा को खुद नहीं बदल सकते। ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है और पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये 12 सीटें सिर्फ सीटें नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी कश्मीर नीति का छोटा लेकिन बहुत जरूरी खंभा है। अगर पाकिस्तान इन्हें खत्म करता है तो वो मान लेगा कि ये शरणार्थी अब लौटने का इंतजार नहीं कर रहे, यानी 1947 वाली राजनीतिक स्थिति अब बदल गई है। ये बात पाकिस्तान की कश्मीर वाली कहानी को कमजोर कर देगी, इसलिए पाक प्रशासित कश्मीर के लोगों से बार बार कहा जाता है, इंतजार करो, राज्य के हित में इंतजार करो, कश्मीर के नाम पर इंतजार करो। पर लोग अब पूछने लगे हैं कि इंतजार कब तक। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान की सत्ता के लिए आसान विरोधी नहीं है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसका कोई अपना बड़ा नेता नहीं है जिसे पद देकर शांत किया जा सके। ये कोई अलगाववादी आंदोलन भी नहीं है, इसने न तो भारत में मिलने की मांग की है न कोई स्वतंत्र देश मांगा है। ये धार्मिक आंदोलन भी नहीं है, ये आम लोगों का गठबंधन है, व्यापारी, वकील, छात्र, ट्रांसपोर्टर, किसान। JAAC पहली बार बड़ी ताकत के रूप में मई 2024 में उभरा था। उस समय बिजली के बिल और आटे की कीमतों पर विरोध शुरू हुआ। तब इस्लामाबाद ने ज्यादातर मांगे मान ली, लेकिन कई अहम मांगे लटक गई, जिनमें पाकिस्तान में

0: बसे शरणार्थियों का मुद्दा भी है। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसका मुद्दा खास तौर पर वही 12 सीटें हैं और सरकार की प्रतिक्रिया बहुत कठोर है। जेएएसी को आजाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है। पाकिस्तान की नागरिक सरकारें जेएएसी से बात करती रही हैं, समझौते भी करती रही हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। ये सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं है, इसके पीछे असली वजह है सत्ता का ढांचा। कश्मीर में पाकिस्तान की सेना की दिलचस्पी बहुत गहरी है। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। पाकिस्तानी सेना के लिए ये सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, ये भारत के खिलाफ उसकी रणनीति का हिस्सा है। इसलिए यहाँ असली स्वायत्तता देना आसान नहीं है। अगर पाक प्रशासित कश्मीर को सच में अधिकार दिए जाते हैं तो सेना को अपनी पकड़ ढीली करनी होगी और ऐसा अब तक नहीं हुआ है। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर एक अलग संदेश दिया। पाकिस्तान ने इसे अवैध बताया, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन कहा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश कहा। इन बातों पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी कश्मीर के आम लोगों पर इसका अलग असर पड़ा। उन्हें लगा कि भारत ने तो अपने हिस्से के कश्मीर को लेकर फैसला कर लिया है। इसके बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में सड़कें, अस्पताल, कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं में खूब निवेश किया। ये सब देखकर पाक प्रशासित कश्मीर के लोगों ने तुलना की। एक तरफ भारत अपने हिस्से को अपने राष्ट्रीय ढांचे में जोड़ रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने हिस्से को संवैधानिक धुंध में छिपाए रखे हुए है। न पूरा अधिकार, न पूरा पैसा, न पूरी भागीदारी, सिर्फ ये कहा जाता है कि ये इलाका खास है। इस खास इलाके के लोग अब हिसाब मांग रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये हिसाब ना देते बन रहा है ना लेते। ये 75 साल के अटके उसी हिसाब का गुस्सा है। पाकिस्तान इस वक्त पश्चिमी दुनिया का लाडला बना हुआ है। अमेरिका और ईरान की डील कराने के लिए सब जगह उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन घर में अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान में विद्रोही आंदोलन चल रहे हैं और अब कश्मीर गले की फांस बन बैठा है। यानी ऐसे कितने मुद्दे हैं जिन्हें वहां की सरकारें कभी सुलझा नहीं पाईं, या शायद सुलझाना चाहती नहीं हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा।
1: बिल्कुल जी, हुण अजकल दा जिहड़ा मुद्दा काफी चल रहा, लोकल भी साडे जिहड़े कश्मीरी दोस्त ने वो अपने अपने लेवल दे उत्ते ते काम कर रहे हैं। सो प्रोग्राम जिहड़ा इसे तरीके ने चलता रहना जी, 1 बजे तो लैके 5 बजे तक तुहानूं पता, ते आपां गल्लां बातां करनियां। ते 1 तरीक जिहड़ी मैं पहला भी गलबात कीती सी, कैनेडा डे हो रहा, इस वारी कैनेडा डे जिहड़ा है वह होर ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कई कारण करके, एक तो वर्ल्ड कप चल रहा इत्थे ते लोकां च उत्साह बड़ा जाग गया, दूजा रेफरेंडम ते किहड़ा कैनेडा च रहना चाहुंदा, किहड़ा बाहर जाना चाहुंदा, ये भी चीज़ां जिहड़ियां ने बड़ियां सामने आ रही। तो उन्हां चीज़ां नूं देखदे होए कैनेडा की जिहड़ी इंपोर्टेंस है, या कह लो भी कैनेडा डे दी सैलीब्रेशन जिहड़ी है वह बड़ियां इंपोर्टेंट हुंदी जा रही। कुछ लोग कहिंदे आ कि भी क्योंकि आपां कैनेडा तो वक्खरे होना तो कैनेडा डे नूं ना मनाया जाए, तो कुछ लोग जिहड़े ने वह कहिंदे ने भी इस वारी होर ज़्यादा जोरों शोर दे नाल मनाया जाए, ताकि लोगों को पता होवे भी आपां कनेडियन जिहड़े वह कट्ठे आ ते कट्ठे ही रहना। सो बट अज दे प्रोग्राम च ते कुछ गल्लां बातां हो गईआं ने। गल्लां बातां तों इलावा साढ़े नाल नईम साहब स्टूडियो च पहुँच चुके, उन्होंने नाल आपां गलबात करनी है। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਰੀਵਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਲੇਟ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ।
2: अपने परिवार ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ।
3: ਕਾਲ ਕਰੋ 5873606890 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਵਾਕ ਇਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ।
2: ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿੰਗਸ ਵਿਊ ਬੁਲੇਵਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 5

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबराउंड 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrang.ca or call 403-400-0203.

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0303-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब।

0: है।
1: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
0: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 एफएम।
3: टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स एंड स्ट्रेट टू योर ऑडियंस। Sabrang Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrang.ca or call 403-400-0203.

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
4: The time is 4 p.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: सकें, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ, पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो वहां फादर नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वो जो अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा और उसी पते पर फटाफट से पहुंच गया। देखा तो पापा वहां पर बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिर करके माफी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, कमाल का बनूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, आप प्लीज ये स्कूटर से वापस चलिए ना, घर चलते हैं, इसके साथ बहुत यादें जुड़ी है, इसको घर में ही रखना है। रोने लगा, माफी मांगने लगा कि मुझे सब समझ में आ गया पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से बाहर भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी लेकिन यही सिखाती है लाइफ में, बस ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं, देखा मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप जो होते हैं उनकी आंखों में सिर्फ दो बार आंसू आते हैं, पहला लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। याद रखिए, मेरे साथ देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक प्यारी सी छोटी सी मोटी
1: जी। यार जी कार्तिक जड़े की वधिया वधिया गल्ला पता करते हैं, ते इसे तरीके नाल मैंने लगता भी अज पापा ते गल्ला पता जड़ियां ने चलनगियां, ते समा जड़ा साडे को बचिया ते उहदे बारे जानकारी जड़ी है लवांगे। पहला सब तो पहला ये वाली गलबात सुन लैने आ, फिर वापस मिलते हैं ते बाकी दी गल्लां पता जड़ियां करते हैं जी।
0: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ वो बैंक है जहाँ दुखों को भावनाओं को जमा किया जाता है और पिता वो क्रेडिट।
2: हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल स्वामी। टुडे आई हैव ब्रॉट अ न्यू पोएम फॉर यू। इन दिस पोएम आई हैव ट्राइड टू से समथिंग अबाउट फादर। ऑल्दो इट इज नॉट सो इजी टू टॉक अबाउट फादर, is not so easy to praise the glory of father. Still, I have tried to tell something.
1: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆ, ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।
3: ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਈ ਐਮ ਮਨੋਜ ਮੁੰਟਸ਼ੀਰ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਏ ਰਾਈਟਰ, ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਲਵ ਮੋਸਟ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ? Why do I want to keep writing until my last breath? Why do I want to have the soil of my country?
4: माता पिता दुश्मन नहीं होते, वो जो अपने लिए नहीं सोच पाए अच्छा उतना आपके लिए सोचते हैं। मैं जब पढ़ता था, दूरदर्शन पर काम करने के लिए आता था, रेडियो पर काम करता था, तो आखिरी बस से लौटता था तो पिताजी पिलखवे में वेट करते रहते थे, बस उतरेगी तो दिखेगा, थोड़ा मैं लेट हो जाऊं तो चिल्लाते थे यार बस इतने बजे आ गए होगी, तुम कैसे रह गए। अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। मेरी बेटियां तो मेरे से जो बात करती हैं, अगर मेरे पिताजी सुन लें, वो कई बार देखते भी हैं, वो उनको कहते ये क्या है, जैसे वो डाइनिंग टेबल पे पहुंची और वो लेट आई छोटी वाली और हम बैठे हुए हैं, तो अब उसने देखा कि बाय द वे मैंने कोई टी शर्ट पहन रखी, तो उसने पहली बार देखी, उसने कहा कूल ब्रो, ऐसे। अब मेरे पिताजी देखते ये क्या है ब्रो, क्या है ये, कैसे बात हो रही है, पूछो उससे, जैसे पूछा ऑफिस ने कि नहीं नहीं देते यार तुम्हारा अजीब।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये जड़ा एक टॉपिक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इहदा वड्डा कारण है, क्योंकि जो आपां इस मौके ते पहुंचदे आ ते हुंदा की है भी जिहड़ी पहली जनरेशन सीगी वह फिर थोड़ी डिफरेंट सीगी, अगे दी अगे जिहड़ियां जनरेशनस ने वह डिफरेंट हुंदियां जा रही, उन्हां दा गलबात करन दा प्लस पेरेंट्स दा बच्चियां दा एक दूजे दे नाल जिहड़ा लगाव है वह डिफरेंट हो चुके आ, हुण उह पहले वर्गियां गल्लां बातां नहीं रहियां। पेरेंट्स जिहड़े ने वह जां कह लो भी पिता दी खास करके, क्योंकि उहनूं बड़ा ایک ایسا

0: लिए नहीं सोच पाए अच्छा उतना आपके लिए सोचते हैं। मैं जब पढ़ता था, दूरदर्शन पर काम करने के लिए आता था, रेडियो पर काम करता था, युववाणी पर एक प्रोग्राम आता था हवा महल, उसको मैं प्रस्तुत करता था, मनभावन एक प्रोग्राम आता था, 60 रुपए मिलते थे। तो आखिरी बस से लौटता था तो पिताजी पिलखवे में वेट करते रहते थे, बस उतरेगी तो दिखेगा। थोड़ा मैं लेट हो जाऊं तो चिल्लाते थे, यार बस इतने बजे आ गई होगी, तुम कैसे रह गए। अब मेरी बेटी अपना काम करती है, अपना बिजनेस चलाती है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, गुड़गांव गई है, नोएडा कहीं गई है, वक्त पे नहीं आती, मीटिंग में फोन नहीं उठा रही, तो मैं ड्राइवर को फोन करता हूं, दीदी कहाँ है, सर वो तो बात कर रही है। तो अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर, अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। तो आज ही एक व्यापारियों के शहर में, टिपिकली कहूं तो एक वैश्यों के बनियों के शहर में, जहां कपड़े का बिजनेस होता था पिलखवा, वहां अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, हिंदी संस्कृत के अध्यापक। तो तीन प्रकार का आदर उन्हें प्राप्त था, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी चरण स्पर्श। वैसे भी हमारे यहां वर्ण व्यवस्था जैसी स्थिति में है, अच्छी बुरी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ऐसा जनरली है कि सम्मान बहुत दिया जाता है। लेकिन उन्होंने अर्थ का अभाव देखा था, उन्होंने देखा था कि वो कॉलेज एटलस की साइकिल से जा रहे हैं और उनका पढ़ाया हुआ एक लड़का जो बीए की दूसरी साल में फेल हो गया था, वो अब कपड़े बेचने लगा है, वो प्रीमियर पद्मिनी से बगल में निकला है, या वो बस अड्डे पे खड़े हैं बस पकड़ने के लिए गाजियाबाद जाने के लिए, और सामने एम्बेसडर से कस्बे का चेयरमैन जा रहा है, उसने गाड़ी रोकी, गुरुजी चलो, गुरुजी छोड़ दूंगा। तो वो चाहते थे कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मींस के हिसाब से, माध्यमों के हिसाब से समृद्ध हो। उस जमाने में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना इस बात की गारंटी थी कि आपको ठीक ठाक जिंदगी मिल जाएगी। उन्हें लगा लड़का मेधावी है, बड़ा वाला लड़का इंजीनियर हो ही चुका था, सबसे बड़े वाले भैया, तो उन्होंने कहा ये भी पढ़ लेगा। और उन्होंने जो मेरे लिए कैरियर डिजाइन किया था वो कोई मुझे परेशान करने के लिए नहीं किया, कोई इसलिए नहीं किया, जो 87 साल के हैं, भगवान उन्हें 100 वर्ष आयु दे, कि मेरे को दुखी कर देंगे। उन्होंने ये सोचा था ये बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, इंजीनियर के बड़े अच्छे पैसे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, जीवन चल जाएगा। पर अंदर से कुछ और तरंग आ रही थी, तो मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। तो दो छोटी बातें, एक बात तो पेरेंट्स के साथ मैं साझा करूंगा, क्योंकि मैं भी अब पेरेंट हूं, एक बेटी अपना काम कर रही है और एक बेटी पढ़ रही है अभी लंदन में, एक प्रतिष्ठित संस्थान है किंग्स कॉलेज, वहां क्लिनिकल साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। जितने माता पिता यहां बैठे हों, अपने असफल सपनों का बोझ अपने बच्चों की पलकों पर मत रखिए प्लीज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो क्या सपने देखना चाहते हैं, आपसे बड़ा सपना देखना चाहते होंगे वो। हां निश्चित रूप से उनका जो अवचेतन है वो अभी कमजोर है, उनकी जो जीवन जीने की इच्छा है वो प्रबल है। बारिश देखते ही उनका मन करता है गाड़ी निकालो, अब साउथ एक्स चलते हैं, अब वहां चलते हैं, दिल्ली में कौन कौन सी जगह है मुझे तो पता भी नहीं है, तो वो उसमें लग गए। लेकिन और आपकी इच्छा रहती कि नहीं नहीं वाटर लॉगिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है, इनके बीच में एक संघर्ष चलता रहता है। इसके बीच में जो संबंध की मृदुता है वो नहीं जानी चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं सहन करता हूं, बहुत सारी चीजें वो सहन करते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, हम तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कष्ट हो, क्योंकि हम 70 के दशक के जो पैदाइश लोग हैं, जो 50 पार कर गए, ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने पहले तो माता पिता सुखी रहे इसके लिए कमाया, और अब जो आर्थिक अनिश्चितता है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हैं, उसमें बेटी परेशान ना रहे, बेटा परेशान ना हो, इसके लिए कमा रहे। हम पर दो भाव चल रहे हैं। कल को मेरी बेटी ये कहे कि मुझे 6 साल काम ही नहीं करना, मुझे पेंटिंग बनानी है, या मुझे काम नहीं करना, मुझे पेरेंटिंग करनी है, बेटी को पालना है, तो उसको ये ना सोचना पड़े कि ये जो पैसे हैं जो घर चलाने के लिए होते हैं ये कहां से आएंगे। तो उसकी जद्दोजहद हम कर रहे हैं दोनों लोग।
1: बिल्कुल जी, ये पेरेंट्स का जेड़ा बड़ा वड्डा अक्सर कहीं पंजाबी च कहंदे वी आपां पेरेंट्स को भी मार खादी ते बच्चे को भी खाने, क्योंकि बच्चे भी पेरेंट्स नूं कुछ नहीं समझदे ते ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

0: समझे कि वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं, पिता सेवक, पिता मालिक, पिता ही सबका दाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता।
1: नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ही इमोशनल कहानी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था, तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, दो दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देखो मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि जरूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है, दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊंगा तब वह पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापिस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने एक्सीडेंट। इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने आते थे। और इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, विस्तार में बताइए। मोहन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापिस आते हैं। ऐसे में लगभग वह 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग रोज 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ, रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, तो लगभग 10 घंटे तक मैं व्यस्त रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है। तो मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, मेरे पापा की आमदनी लगभग 10,000 रुपए है, मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 कुल जोड़ लेते हैं, कुल आमदनी 15,000 रुपए है। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण मोहन ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब बारी थी प्रश्न नंबर 4 की, और 4 नंबर प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है, 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए, और यहाँ पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते

हैं? तो मोहन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है, कई बार मैं बिना खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली थी और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा था कि मम्मी तुम इतनी कड़वी सब्जी क्यों खाती हो, और तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम दो सब्जी बनाकर खाएं, तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करें। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। अगला प्रश्न नंबर 6 था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने दो दिन से घर में खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा, ये कह के निकला हूँ। अब बारी थी प्रश्न नंबर 7 की, और 7 नंबर प्रश्न था, आपको अपने घर में मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं, वो खुद भी कमाती हैं और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद भी करती हैं। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्लक में डालकर बचत करती हैं। उसके किसी प्रकार के कोई शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। इसके बाद प्रश्न था 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? यह प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतर आत्मा से आवाज आई, अरे मोहन तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को योग्य रूप से निभा रहे हो क्या? और अंतर आत्मा से ही जवाब आया, नहीं बिल्कुल नहीं। इसके बाद बारी थी प्रश्न नंबर 9 की, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न था प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई, बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई तब भी वो कुछ ना लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर मोहन उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये ले 8,000 रुपए, मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। दीदी ने मोहन को पैसे पकड़ा दिए। मोहन ने पूछा, कहां से लाई हो पैसे? तब दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से एक महीने की सैलरी एडवांस मांग ली, मम्मी भी जहां काम करती हैं वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए, ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसों पर स्थिर हो गई थी। दीदी फिर बोली, भाई मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊंगा, अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक हैं, लेकिन मैं अपने शौक की बजाय अपने परिवार को ज्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर

ऐसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की संभावना भी नहीं है। ये कहकर मोहन सीधा भागवत सर की केबिन में जा पहुंचा। भागवत सर ने मोहन की ओर देखा और पूछा, अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? तब मोहन बोला, सर ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु वो जवाब लिखकर नहीं अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और इतना कहकर भागवत सर के चरण स्पर्श किए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मोहन ने देखा कि मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। मोहन को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी मुझे बाइक नहीं चाहिए, और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे, और मम्मी आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना, रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए तुम्हारे पापा दुखी हो गए, काम छोड़कर घर वापिस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। तब मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को आपकी पसंद की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, वह प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन वाह, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वह प्रैक्टिकल जीवन में करके दोगे। मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? तब भागवत सर बोले, मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैंने बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुना, मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और उस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक की

हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी डी पारेख पेश हूँ आपके बीच एक नया गीत लेकर। ये गीत एक बेटी अपने पापा को डेडिकेट करती है, जिनका नाम है भावना मुथा कोठारी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपने पापा विमल चंद जी मुथा को बड़ा ही दिल से प्रेम करती है, हर पल उनको मिस करती है, क्योंकि सात समुंदर पार जो है, और इतना मिस करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि वो प्यार शब्दों के माध्यम से गीत बन जाता है, क्योंकि ये गीत को लिखा भी है भावना मुथा कोठारी ने। मुझे एक बेटी का कहना बहुत अच्छा लगा, कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, शाम यानी इवनिंग, मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो खिलौने लाते हैं मगर शाम मेरे पापा को लाती है। पिता को अगर प्रेम का कोई एहसास कराने का तत्व है तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ बेटी हो सकती है। तो लीजिएगा, सुनते हैं एक बेटी और पिता के प्रेम का नजराना आपके बीच। बड़े दिल से सुनना, बड़े भाव से सुनना।